और लीजिए सामिन, अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं एंजेलिक क्लेयर यूसुंदान और गाया है सरताब एरेनर ने।